अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज।

तीन बंधा विच इस तरह वंडदे हन। हे भाई, जे कोई मनुख अपने आप नूं गुरु दे हवाले करदा है, ओ प्रकाश रूप परमात्मा दे मेल दी अवस्था नूं समझ लैंदा है। उस दे अंदर जोत जग पैंदी है, उस दे अंदर राम दा प्रकाश हो जांदा है। पर इस अवस्था नाल जान पछाण करन वाला हुंदा कोई विरला ही है। गुरु दे सन्मुख होए अजिहे मनुख नूं इह समझ आ जांदी है कि संसार एक रुख समान है।

संसार अमृत दी एक बगीची है जो उस पूर्ण परमात्मा ने बनाई है। जिवें एक पौरा फुल दे रस विच मस्त होके फुल दियां खिड़ियां पत्तियां विच अपने आप नूं जा बनाउंदा है, जिवें कोई पंछी अपने खंभां नाल हवा नूं उलारा दे के आकाश विच उड़दा है, तिवें उह गुरमुख नाम रस विच मस्त होके पूर्ण खड़ाओ नूं अपने हिरदे विच टिकांदा है ते सोच मंडल विच हुलारा दे के प्रभु चरणा विच उड़ारी लांदा है। उस गुरमुख दी उस अडोल अफुर अवस्था विच

अंजन कहंदे ने सुरमा, गुरु ने ज्ञान दा ऐसा सुरमा दिता कि मैनू इस गल दी सोझी हो गई, राम नाम तो बगैर

मैं सिमरन करके ये गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखां दा नास हुंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देने वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव दा मिलाप हो जांदा है और ओ इंसान इस कहानी नू जान लैंदा है सिमरन सदका कि सारे विच परमेश्वर दा नूर है ओ दी जो

तृष्णा रूपी जल सुख गया, मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है ये सारियां भुखां तृष्णावां खत्म कर

जितना समा परमेश्वर दे नाम दा कीर्तन सुनोगे उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाणगे ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैणगे। इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करदे हन कि हर वेले परमेश्वर वल ध्यान रखो। जिवें कीर्तन सुनदे आ दुख भुल जांदे ने, हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे ते दुख कलेश कदी भी तुहानू तंग नहीं करनगे। पर इन्हां गल्लां दी सोझी हुंदी है जदों गुरु अते गुरु दी बाणी दा सानू ज्ञान होवे। गुरु की है? गुरु है बाणी, क्योंकि गुरु बाणी द्वारा उपदेश दिंदा है। इसे वास्ते सतगुरु जी अपने शब्द विच इस तरह फरमांदे हैं,

एक अल्लाह एक वाहेगुरु संसार ते भेजण वाला है, इस करके ओदे नाल जुड़ो। गुरु इन्हां गल्लां दा ज्ञान करांदा है कि मेल करना है ता परमेश्वर नाल करो। ते सतगुरु जी फरमांदे हैं गुरु दा मेल किन्ना जरूरी है।

इतना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे तामी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान नहीं। कई बारी आपां देखदे हां एयर कंडीशन कमरे हुंदे ने पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा हुंदा है गुस्से दे नाल उहदे मन नूं चैन नहीं हुंदा। रोशनी विच इंसान बैठा भी अंधेरे विच हुंदा है अंधेरा केड़ा अज्ञान दा। अज्ञान की है अज्ञान ए है कि दूसरे दा हक मैं खावां अपनी सुख वास्ते दूसरे दा हक खाना दूसरे नूं दुख देना ए है अज्ञान।

परमेश्वर की कहानी का पता नहीं लगता। गुरु परमेश्वर की कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जेडे गुरु दा उपदेश सुनदे ने ओ फिर इस कहानी नू जान लेंदे ने कि सारे विच

जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू लै, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा, सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। भावे उन्हें माया तेनू बहुती मेनू थोड़ी दिती, पर गए थे आप इकट्ठे से, इस करके असि बराबर हिस्सा करना। और पैसे तू झगड़ा हो गए, और झगड़ा होंदा भी अक्सर देखते हैं, देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्होंने कुछ सेवा का चा है, बहुत घट होंदे हैं सेवा वाले, बहुते थे अपने स्वार्थ वास्ते ए नारा लगांदे ने असां सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं होंदी, सेवा ते मन होंदी। हुण मन विच लालच, दोनों भरा हैगे ने भगत, पर माया पिछे लड़ पे। ए लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होगा, पानी विच रह के, पानी दे विच रहन वाले जीवां नूं खा के अपनी लालच वाली ए बिरती पूरी करेगा। हुण ब्रह्मा ने भी तप कीता, उसनूं भी गुस्सा आया, उसने भी श्राप दे दिता। कहन लगा, ठीक है भरा, जे मैं मर जाना तो जिंदा तू भी नहीं रवेगी, तेरी भी मौत होवेगी, तू जंगल दा मस्त हाथी बनेगा। और जंगल विच भटकदा भटकदा एक दिन उसे जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा, मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा, ते मैं फिर अपनी तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तेनूं गोते दे दे के मारांगा, और इस गल दा बदला लवांगा कि तू मैनूं श्राप दित्ता है। ने भगत पर माया विच आ गई, और माया ने दोनों नूं भगती दे थां तों थले सुट दिता। समा आया, दोनों दी मौत होई, वड्डा मस्ताथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नूं गुरबाणी विच भी साहिब जी बयान करदे हन, राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, कर ऊपर कढ़ निस्तारे, गज पत पार उतारे। अनेकां शब्दां विच इस साखी दा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा। एक भरा हाथी बनिया, एक तंदुआ बनिया, और वो समा आया होता जिहड़ा हाथी बनिया सी, बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने, ए जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुम दे आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी, ए ज्यो ज्यो अगे होया इस नूं ठंडा पानी मिले, और हौली हौली ए हाथी पानी दे विच काफी अगे तक चला गया, और अगे एदा छोटा भरा तंदुए दी जून विच बैठा सी। उसने अपनी तारां दे नाल हाथी दे अगले पैर पकड़ ले, और हाथी नूं अपने वल खिंचना शुरू कीता। पहला ते हाथी ने परवाह ना कीती, पानी पी के वापस मुड़न लगा, पिछे नहीं मुड़िया जांदा, ते हाथी समझ गया मैनू कोई पकड़न वाला तगड़ा जीव है। इसने जोर लाया, कुछ पिछा आया, पर फिर तंदुए दा जोर चलिया, ते हाथी नूं खिंच के ओ पानी दे

विष्णु भगवान ने इन्हां दे बंधन कटे, तंदुए नूं भी मुक्त कीता, इस हाथी नूं भी मुक्त कीता, ते दोनों भरा भोता ते ब्रह्मा। पूरे गुरु की प्राप्ति नहीं सी, भगती करते सन, पर माया का लालच मन विच हटिया नहीं सी, इसे वास्ते इन्हां नूं इतना दुख भोगना पिया। और जद भगवान मिलिया ते फिर मुक्ति नूं प्राप्त होया। इसे शब्द दे विच धन गुरु रामदास जी जिथे इन्हां दोनों भरावां दा जिक्र करदे ने कि माया पिछे सराफ दे के दोनों ने जोड़ना पाईया, दुख हो गया पर फिर सिमरन कीता ते भगवान ने इन्हां दा पार उतारा कीता। इसे शब्द विच सतगुरु जी फरमांदे हन, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे है। भाई इन्हां कथा कहानियां नूं सुन, गुरु दी बाणी ए कथा कहानियां तेनूं दस रही है, इन्हां तूं सिख्या लै। झगड़ना फिर माया पिछे झगड़ा, पर माया बड़ी मिठी है। साहिब जी फरमांदे ने, पापां बाजो होवे नहीं मोया साथ ना जाई। पापां तो बगैर माया बहुती कट्टी नहीं हुंदी, ते जद इंसान मरदा है ते ए नाल भी नहीं जांदा। सतगुरु जी फरमा रहे ने, सुन ए बाणी, मन विच प्यार रख, जिन्नी भज नठ माया वास्ते करदा है, अगर सिमरन करें ते सिमरन सदका तेरी कमाई विच बरकत पवेगी। ए माया ते कुछ भी नहीं, सिमरन करेगा ते परमेश्वर दी जोत तेरे अंदर जग जाएगी, ओदे नाम दा प्रकाश हो जाएगा, ते फिर तू जिधर भी देखेगा तेनू परमेश्वर नजर आवेगा। इन्हां भगतां दी तरह पर एक वारी तू भी कह उठेगा, ऐ भाई जानी जानी रे राजा राम की कहानी। मैं भी परमेश्वर दी कहानी नूं जान लिया कि ए संसार परमेश्वर दी बनाई हुई खेड है, परमेश्वर दा अमृत दा बगीचा है।

आनंद घना संत जना मिल पाए रसना नाम बना जिन पाया प्रभु अपना आए तिसे गणा एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल थल

दर्शन होए प्यास, प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण।

मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ाव्या दिसन सबे छार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तिण प्रभ संग मौलिया।

वागुरु निरंकार आप आए हैं, दुष्ट दमन तू संसार ते जा। कहंदे ने मेरा मन नहीं करदा तेरे चरणा तो, पर हुकुम भी मनना है, पर बार बार कह रहे ने मेरा दिल नहीं करदा, किसे होर दी ड्यूटी लाओ। प्यार नाल सत्कार नाल, किसे जोर जबरदस्ती नाल नहीं, थापड़े दे दे के जिवें प्यो पुत्र नूं समझांदे, बच्चे नूं आखदे

गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शबद रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा तू बेल अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरी बहु रंगी सब तेरे निया तू बेन ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सभी मुन इंद्र महा शिव जो करी तू बेन अत ऊंचा ताका दरबारा

माता जी का कोरा जवाब सुन के जलाद परत आया, कंध मुकम्मल तैयार हो गई। साहिबजादे असहे ते अकहे कष्ट सहारदे होए शहीदी पा गए। धरती कंब उठी, आसमान डोल गया।

खास व्यक्ति ही इस नूं गा सकता है जां सुन सकता है, बल्कि जो भी श्रद्धा नाल इस नूं पढ़दा है, श्रद्धा नाल इस बाणी नूं सुनदा है, ये बाणी उसे दा कल्याण करती है। ऐसी है ये अमृत बाणी, जिस बाणी प्रथाएं

और फिर अमृत नाम वाहिगुरु दा ये थाल है धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिस दे विच ये बाणी असा कलयुगी जीवां दा उद्धार करन

भगत कबीर जी परमात्मा नूं मिलन दा एक बड़ा सुचज्जा ते सुंदर रस्ता दसदे ने। कहंदे ने हे भाई जे रब नूं मिलना ते हउमै दा त्याग

मेरे मन विच तांग होवे के मैं जाके तेरे दर्शन करा। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी जिन्ह ने 12 साल सेवा की थी। 72 साल दी उम्र विच बाबा अमरदास जी जदों गुरु अंगद देव पातशाह दे कोल आए ते जदों दर्शन कीता ते मन मन गया। आ मन जिथे मन्ना हुंदा ना ओ उथे इक नजर ते ही मन जांदा है, पहली नजर ते ही मन जांदा है। जदों बाबा अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी दे दर्शन कीते आख्या मैं गुरु दी पाल कर रहा सां ते अज मेनू गुरु प्राप्त हो गए। उस दिन तो बाद बाबा अमरदास जी अपने घर नहीं गए, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी सेवा विच लग गए। रोज गागर दी सेवा करनी, खंडूर साहब तो गागर लैनी, 5 मील तुरदे हुए ब्यासा नदी।

पहले पैरे आपने उठ के तीजे पैरे उठ के तुर पैण, क्योंकि पहले दो पैर आप कीर्तन नाम विच जुड़े रहिंदे, ते जदों तीजा पैर हुंदा

उल्टी प्यारी टुरना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पिठ ना हो जा। साथ सगत बोलो श्री तुरते हो पिछली प्यारी अदा।

खुंजाया जो सेवा तो बिना चला गया। आज 12 साल का आखिरी दिन है, आज एडा चखड़ चल रहा है, एडा मीह पै रहा है कि रस्ता नजर नहीं आउंदा। आप पुठी प्यारी तुरदे हुए अद्धे रस्ते

गुरु पातशाह इतना हूं पिट हो रही है, माफी दे दे। ते फिर व्यासा वाल तुर पे, गागर जल्दी भरी सिर ते चुकिया। अज एडा मीह पै रहा है, जखड़ चुल रहे हैं।

क्योंकि मन विच श्रद्धा सी कि ए जल मैं गुरु वास्ते लै के जा रहे ते सच्चे पातशाह दे इस जल दे नाल इश्नान कर। जदों जल दी गागर ना डिगण दिती खड़ाक होया अंदर।

सच्चे पातशाह चुक चुक जा रहे सात सगत बोलो श्री क्योंकि जितना फल लगता है टैणी नू ओ टैणी उतनी चुकती चली जानी है एडी सेवा करके 12 साल सेवा कीती गुरु अमरदास जी ने ते फिर की होए गुरु नानक दा रूप बन गए सात सगत

पता नहीं सी कि इस तरह परमेश्वर का सदा आ जाएगा। साहब जी कहते ने इंसान हर काम महूरत देख के करता है। घर बनाना होवे घर बन जावे, ग्रह प्रवेश करना होवे या कोई ब्याह होवे, कोई भी खुशी

फराज मिल जोबन ग्रह शोभा रूपवंत जवानी जान वाला सब कुछ छड गया राज भाग जोबन जवानी ग्रह कहते ने घर अपना घर शोभा सोना रूप सारा कुछ छड के एक दिन तुर पिया बहुत दर्ब हस्ती यार घोड़े लाल लाख बयानी हाथी घोड़े समय दी सवारी हर चीज एक दिन छड के जो बड़े चाह नाल बनाई एक दिन तुर पिया।

कर दें दी इस वास्ते के है कि मां बाप नियामत ने विछोड़ा किसी दा भी पवे विछोड़ा सहना बड़ा औखा है। मां मरे प्यो मरे पुत्र मरे पत्नी मरे चाहे पति मरे पर साहब जी कहंदे ने ए भी सच है मरना जरूर है ए भी सच है कि दुख सहना बड़ा औखा है। इसे वास्ते ए बाणी दिती है कि परमेश्वर दा सिमरन करो दुनिया नु नाशवान समझो ताकि इस दुख नु तुसी सह सको ए समझ सको

पहाड़े रण मैं जिते पवाड़े। हर इंसान ये चाहता है कि मैं किसे ना किसे ते हुक्म चलावा, मेरी हुकूमत होवे, दुनिया मैनू सलाम करे। इंसान लड़ाइयां जितता है, तरक्कियां करता है, बड़ा कुछ बना भी लेंदा है, ये भी कहता है हों मारो हों बंदों छोड़ो, मुख ते एव पबाड़े। मुख कहंदे ने मोह, मोह तू भी कहंदा है मैं जिनू चाहवां उनू मार सकदा, जिनू चाहवां उनू छड़ सकदा। पर साहिब जी कहंदे ने दुनिया ते हुक्म चलाण वाला कल भी सलाह करके सौंदा है, पर उदों ही पता लगदा है।

0: You're listening to CNET Radio.
1: साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने शब्द कीर्तन द्वारा इस जलंदे जगत नूं तारन लई गुरमत संगीत परंपरा दी दात बख्शी। रहमता परी इस परंपरा नूं समूह गुरु साहबान ने सदियां तों सिखी जीवन दे अनिखड़ अंग वजों स्थापित कीता है। दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी बाणी दे अखुट खजाने विच वख-वख रागां, गायन शैलियां अते संगीत छंदां दी अदूती दात प्रदान कीती है। आप जी दी पवित्र बाणी शब्द हजारे पातशाही दसवीं हर गुरसिख हिरदे विच वसी हुई इलाही बाणी है। श्री दसम ग्रंथ साहिब विच इस बाणी नूं वख-वख रागां विच अंकित कीता गया है। गुर किरपा ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਾਦਨਾਦ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਰਾਗ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਰੂਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ।

तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरी बहु रंगी सब तेरे निया तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत अंत न पावत देव सब मुन इंद्र महा शिव जो करी तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा